0: Why don't you try it?
1: Love, love, love.
0: Way to go, guy.
1: Love, love, love.
0: That's right, that's right. Love, love, love.
2: Oh my God, can we get an ambulance? This guy's collapsed.
3: Bhai, balle, balle, balle, balle. भाई आज तो नजारा आ गया भाई।
4: आहो वेखो ना जी कितनी सोहनी जन लेके आया अमली।
3: लो भाई अमली का ब्याह भी हो गया। ओ तारी जेतो वालिया
4: हां भाई
3: ला कोई शिंदे का नवा गाना। ओ शिंदे दा लाई भाई जदना बहुत बैजा बैजा हो जाए
4: ला मालको ला दंदे हम पैसे नहीं लेने थोड़ा
3: भाई। वाह वाह वाह वा।

0: This is Ahmad Hussein, and you're listening to Link FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Saim Mudassir.
4: This is Rahan.
5: My name is Rizwan Ishfaq.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba, and you are listening to Link FM.
9: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
10: Link FM.
9: Listen live online at linkfm.org.
10: Link FM.
11: क्या हुआ?
12: वो तो
11: क्यूट है ना?
12: अरे पहलवान है,
11: पर तुमसे प्यार करती है।
12: हो नहीं सकता।
11: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
12: हो नहीं सकता।
11: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
12: ये हो नहीं सकता।
13: होनी को तो कुछ भी हो सकता है।

0: अब मोंटी
1: सिगरेट दे, अभी कल्टी बात।
0: अरे एक मिनट, मैं मोंटी से मिला मांगता।
1: मोंटी नहीं मिलने को सकता तेरे से।
0: काहे को?
1: क्योंकि वो अभी डिप्रेस है।
0: डिप्रेस।
1: बाथरूम में अपने आप को बंद कर रखा उसने।
0: काहे को वो प्रेस है?
1: देख मेरी बात सुन, क्या है उसको आज एक नाटक ऑफर हुआ है। अभी पिक्चर वाला आदमी नाटक करेगा, ड्रामा करेगा तो डिप्रेस नहीं होगा। है चल

0: said cut? Who said cut?
1: इधर देख धक्कन तेरा पीछे.
0: Why you yell cut?
2: Why you stupid? ऐसा जैकेट पहन के घूमता है तू? ऐसा जैकेट पहन के घूमता है? क्या लग रहा है तू? हैं? मेरे को ये मत बोलना कि वो डायरेक्टर बोलता है तो ऐसा जैकेट पहन के तू घूमता है. तू स्टार है, कच्चा पहन के घूम, तो कोई मना नहीं करेगा तेरे को.

0: name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

19वीं सदी का लखनऊ हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का गहवारा था। लखनऊ उस तहजीब का दिल था और उस दिल की धड़कन थी उमराव जान अदा। मगर सितम ये कि उस धड़कन के सीने में भी एक धड़कता हुआ दिल था जिसकी आवाज उसके जीते जी किसी ने नहीं सुनी। उमराव जान की हर गजल उन्हीं धड़कनों की सदा है, उसी दिल की पुकार है।

जानम इतनी जल्दी क्या है, जाम ये जी भर पी तो लो, मरना तो है मौत से पहले।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
12: And the winner is...
13: And the winner is...
14: And the winner is...
12: Your business being heard on the radio.
15: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
16: Sheffield's very own community radio station,
17: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
16: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
17: Link FM.

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जितने भी सुनने वाले हैं उनको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। जो ने अभी ज्वाइन किया उनको बताते चले कि ये प्रोग्राम है कवाली स्पेशल और आपका और मेरा साथ होता है रोज। सोमवार को छोड़ के बाकी दिन हमारा और आपका साथ रहता है और इसमें हम आपके लिए मुख्तलिफ कवाली पेश करते हैं। और अब ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ।

0: You're listening to Link FM.
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
2: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
3: Lazier Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, naziersolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या द क्लेम टीम .uk पर तलाश करें।
5: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: परेशान खलते हुए जी
7: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन से एमओटी सेंटर लेके जाऊं
6: ये तो कोई फिक्र वाली गल है नहीं ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने कोई कार वे या वैन रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस
7: ए ए एमओटी वाले हैं किधर
8: ए ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटरक्लिफ S92PE अपॉइंटमेंट नहीं कोई जरूरत नहीं अच्छो एमओटी गड्डी निकरो ते मौजा करो फोन नंबर 07867862585.
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
9: For the latest updates, follow us on Facebook.com.
10: Welcome back, खुश आमदेद जिन्होंने अभी ज्वाइन किया ये क्वाली स्पेशल और मैं हूँ फैसल याकूब सुल्तानी और क्योंकि वक्त था ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है स्टे ट्यून्ड और ब्रेक के फौरन बाद अब चलते हैं हम अगले कलाम की तरफ

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

0: दिल से निकले और हर सूर दिल को छो जाए,
1: वही है लिंक एफएम।
0: दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।
3: दिस इज लिंक एफएम।

0: Community Radio for Sheffield.
1: This is Link FM.
2: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ
3: Link FM Sheffield.

0: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 96.7.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abedul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahan.
5: My name is Rizwan Ishfaq.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: You are listening to Link FM 96.7.
10: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
11: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
12: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
13: And the winner is
14: your business being heard on the radio.
15: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
16: Sheffield's very own community radio station.
17: Link FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abedul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
6: This is Rahan.
5: My name is Rizwan Ishfaq.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
16: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
17: Link FM.
16: Sheffield's Link FM. Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
17: Link FM.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
1: मैं औरंगजेब चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन कियानी है।
5: मेरा नाम अहमद असगर है।
6: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूँ।
7: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
8: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक FM 96.7।
9: If you're looking to promote your business on Link FM, call our sales team now on 0114 261 8182 or email info@linkfm.org.

0: जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल।
1: जहाँ बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ। लिंक एफएम।

0: से निकले और हर सूर दिल को छो जाए,
1: वही है लिंक एफएम।
0: दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।
3: Linking communities, thinking positive. This is your local community radio station, Sheffield's Link FM. The voice of the communities, 96.7 Link FM.
4: Link FM.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
8: Across Sheffield on 96.7, around the world at linkfm.org. This is your community station, Link FM.
17: You are listening to Link FM.

Assalamu alaikum and a very warm welcome. आप सुन रहे हैं ड्राइव टाइम शो. ऑन लिंक FM 96.7 FM. लिंक FM, लिंकिंग कम्युनिटीज थिंकिंग पॉजिटिव. मैं हूं जवाहर चंजुआ. आपका साथ देता रहूंगा शाम के 6 बजे तक, इस उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ होंगे. आपका सफर जहां का भी होगा, कहीं भी जा रहे होंगे, लिंक FM आपके साथ साथ होगा. आपने सिर्फ ट्यून इन करना है. अगर अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं तो 96.7 FM की फ्रीक्वेंसी या DAB पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. और घरों में भी आप अपना ये प्रोग्राम सुन सकते हैं अगर आपके पास रेडियो है या DAB है. किचन में सुने, बेडरूम में सुने या फ्रंट रूम में, जहां भी सुने, उम्मीद है आज की शाम भी आप एंजॉय करेंगे हमारे साथ. कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ मोहब्बत भरे, कुछ दुख भरे, सब ट्रैक्स होंगे आपके लिए. लेकिन उम्मीद ये है कि आपको वो सारे ट्रैक्स अच्छे भी लगेंगे. हमारे स्टूडियो का नंबर है 0114261 8181 एंड व्हाट्सएप 0793984939. कीप सेंडिंग योर व्हाट्सएप मैसेजेस. फॉर फीडबैक्स ऑल्सो, जरूरी नहीं है कि आप प्रोग्राम के दौरान ही मैसेजेस करें, आप वैसे भी मैसेजेस कर सकते हैं, हमें आपका मैसेज मिल ही जाएगा. प्रोग्राम के बारे में या बाकी प्रोग्राम्स के बारे में भी अगर राय का इजहार करना चाहें, 0793984939. आई विल अप्रिशिएट योर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. एंड व्हेन आई से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्राइव टाइम हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल अदर शोज ऑल्सो. सो साथ देते रहिएगा और एंजॉय करें आज का ड्राइव टाइम.

जी ड्राइव टाइम मंडे टिल थर्सडे ऑन लिंक एफएम 96.7 एफएम स्टूडियो नंबर इज ऑडिबल ऑन 4261-8181 एंड व्हाट्सएप 0793984339 उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से होंगे

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

जी मैं तेरी थी मैं तेरी हूँ, ये कह रही है भाई पहले इससे पता करा लो कि क्या किसको रही है भाई। कलीम थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। और एक और ट्रैक सॉरी एक और मैसेज आया है कि ब्यूटीफुल ट्रैक। अब पता नहीं कौन से वाले ट्रैक की बात हो रही है कि सारे यहाँ ब्यूटीफुल लगते हैं भाई, ये भी बता दिया करो कि केड़े वाले ट्रैक की गल हो रही। मैं क्या तो ये कह रही है कि जी मैं तेरी थी तेरी हूँ, तू बड़ा लकी है भाई कि कह रही है कि मैं तेरी थी तेरी हूँ तेरी ही रहूँगी। वाह, यानी पास्ट भी तू प्रेजेंट भी तू फ्यूचर भी तू, क्या बात है यार, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त यार।

और होता भी ऐसा है यार। थी था थी है एंड विल, क्या कहते हो, ऐसा ही होता है भाई। सच्ची मोहब्बत होती भी है भी और हमेशा रहती है, इसी तरह होता है। और अगर आना जाना लगा रहे तो फिर मोहब्बत नहीं होती, समझ रहे ना आप। लेकिन इस पे टेंशन लेने की भी कोई नहीं यार, हर बंदे का अपना अपना माइंड सेट है। आप लोगों का, सारी दुनिया का माइंड सेट तो चेंज नहीं कर सकते, आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आप अपने आप को चेंज करें, क्या कहते हैं आप, अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा, जो भी आपने किया होगा, कहीं बार बार कहीं गए आप, कहीं लूर लूर आपने किया, जैसे कलीम कह रहा था, कलीम वॉज लूर लूरिंग फॉर अ वीक। वेयर हैव यू बीन।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम
1: शेफील्ड, शेफील्ड्स लिंक एफएम।
2: जहां दिल मिलते हैं, जहां बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल,
0: जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
3: लिंक एफएम शेफील्ड।

ji, welcome back after the commercial break. If you just tune in, this is Link FM 96.7 FM. And you are listening to Drive Time Show. Drive Time, Monday till Thursday, 4 till 6. और ये भी आपको बताते चलें कि आज शाम 7 बजे पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर में एक कम्युनिटी मीटिंग हो रही है. अगर आप भी उसमें आना चाहें, शामिल होना चाहें, शाम 7 बजे. इफ यू नीड फर्दर डिटेल्स यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 0793984939.

पराठा, आलू पराठा या मूली पराठा, मेथी पराठा आपको दोबारा आपकी आंटी जी ने दिया या नहीं दिया वीकेंड के ऊपर, जरूर बताइएगा। और साथ में जितने सुन रहे हैं, अगर आप बताना चाहें आज का क्या मेन्यू है जी, 0114261 8181 एंड व्हाट्सएप 0793984939।

今麦地包一次双高机。और शायद जी आपने ट्रैक की फरमाइश की थी उदित नारायण की आवाज में, इस वक्त मुझे यही हमारे सिस्टम में नजर आया. आई एम श्योर यू आर गोना एंजॉय दिस ट्रैक, अ वेरी नाइस ट्रैक. एंजॉय द ट्रैक.

अगर आपने अभी अभी रेडियो को ट्यून किया, मैं हूं जवाद जंजुआ एंड दिस इज ड्राइव टाइम शो। ड्राइव टाइम मंडे टिल थर्सडे 4 till 6 ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लिंक FM, लिंकिंग कम्युनिटीज थिंकिंग पॉजिटिव, लाइव फ्रॉम पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, लाइव ऑन 96.7 FM, ऑन DAB एंड ऑनलाइन। We broadcast 24 hours a day, 7 days a week. So let's play another track and I will be back after this track.

0: That's all for today's Drive Time. Thank you so much for your company. Stay safe and stay tuned for more great programming. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने अतराफ के लोगों का ख्याल रखिएगा. प्रोग्राम के दौरान अगर मेरी किसी बात, मेरे किसी अमल से आपका दिल दुखा, मुझे माफ कर दीजिएगा. जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी. फी अमान अल्लाह एन अल्लाह हाफिज.
1: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
2: Dil se dil ko milata, har rang, har awaz ko sajata. Aapka apna radio station. Dil se aapke saath.
3: Link FM Sheffield. Mixing in the house.

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम
1: शेफील्ड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज लियो,
2: माय नेम इज अज़र इकबाल,
3: दिस इज डॉक्टर शाह नवाज,
4: दिस इज काउंसलर शफक मोहम्मद,
5: My name is Ibrahim Hussain.
6: This is Aftab Ehman.
7: This is Ibrit Tabassum.
8: I'm Chris Lewis.
9: My name is Javed Rashid.
10: My name is Mohamed Maroof.
11: This is Sohail Bumtaz. You're listening to Link FM.
12: My name is Shireen.
13: My name is Abdul Rahman.
14: My name is Saim Mudassir.
15: This is Rohan.
16: My name is Rizwan Ishfaq.
17: My name is Asham.
18: My name is Azan Mudassir.
19: This is Ariba and you are listening to Link FM.
14: You are listening to Link FM 96.7.
0: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
4: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है। आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
16: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
18: And the winner is...
9: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
0: Sheffield's very own community radio station,
12: Link FM.
16: My name is Shireen.
13: My name is Abdul Rahman.
14: My name is Saim Mudassir.
17: This is Rohan.
16: My name is Rizwan Ishfaq.
17: My name is Asham.
18: My name is Azan Mudassir.
19: This is Ariba and you are listening to Link FM.
0: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
12: Link FM.
0: You're listening to Link FM on 96.7 FM, linking communities, thinking positive across South Yorkshire.

0: थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और मेरा मीडिया यहाँ पे मौजूद है, इनको सलाम है, कितना टाइम दिया, सारे मीडिया की सलाम। ओवरसीज पाकिस्तानी, सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा आपसे, ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए एक सरमाया है, आपकी वजह से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। हमेशा पाकिस्तान की मदद कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक सो मच।
1: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.

0: Link FM, your number one community radio station.
1: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
2: This is Link FM. Link FM.
3: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
4: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: कुक स्टूडियो सीजन 15।

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

0: कि आपको अपने वतन की याद दिलाएं।
1: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
0: जिसके खानों के लिए सब हैं बेताब, वो है नायाब, वो है नायाब. Phone us now on Sheffield 31580 or visit nayabsonline.co.uk.
2: एक्सीडेंट हो गया रपा रपा
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्राइन गड्डी ना एक्सीडेंट होई गया ते द क्लेम टीम तुसन खिदमत विच हाजिर है जेडे शफील्ड दादरम ते गिरदोन वाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रोदरम
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

0: If you would like to promote your business on our radio station, contact on 0114 261 8182 or email us on info@linkfm.org.
1: You're listening to Link FM on 96.7 FM, linking communities, thinking positive across South Yorkshire.
2: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
3: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
2: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.

0: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
1: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

0: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
1: This is Link FM. Link FM.
2: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले
3: और हर सूर दिल को छो जाए,
1: वही है लिंक FM.
2: दिल से आपके साथ
1: लिंक FM Sheffield.
4: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ
1: लिंक FM Sheffield.

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम मोहब्बत भरा।
1: You are listening to Link FM.
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusi sun rahe ho Link FM.
4: Lazier Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, naziersolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
5: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00-57-1009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या द क्लेम टीम .uk पर तलाश करें।
6: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS

0: This is Ahmad Hussein, and you're listening to Link FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abed Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahan.
5: My name is Rizwan Ishfaq.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba, and you are listening to Link FM.
9: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
10: Link FM.
9: Link FM, your number one community radio station.
11: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.
12: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
13: लिंक एफएम शेफील्ड।
14: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
15: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
14: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
15: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

100 अंधेरों में भी रोशन हो, उस हकीकत की तलाश है। तेरी दहलीज पे छोड़ाए उस मोहब्बत की तलाश है। झुकने की इबादत को तो समझे जहां वाले, कटने पे जो हासिल हो उस जन्नत की तलाश है।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: At the heart of the city, you're listening to Link FM.
16: Link FM.